0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

पहनेंगे जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स भी दे दो इसको, इसको गाड़ी।

0: सम्पर्क नम्बर 9855068590।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम बैंड में थप्लो 7 मेगाहर्ज बाट हो बद्री प्रसाद साहब बाट आज विक्रम सम्मत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन 2026 अगस्त 9 तारीख श्रावण 24 गते आइतबार आज कामिक एकादशी व्रत धार्मिक महानुभावहरूले आज कामिक एकादशीको व्रत गर्नुहोला अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरी।

जय श्री सचिदानंद गुरु महाराज को जय। जय श्री शांताबाई जी लगाए थी महात्मा जी को जय। हरिओम तक्षोम।